रहा हो सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई काहन जाई तेरी तिल वडे आई सब सत सब तप सब चंगे आईया सिद्धा पुरखा की वडे आईया तुद बिन सिद्धि किना न पाईया कर मिला ना ही ठाकुर हाईया आखड़ वाला क्या बेचारा सिपती पड़े तेरे भंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हरा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उत भूखाए खाए चलिया है दुख सो क्यों बिसरै मेरी माए साचा साहिब साचा ना रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई अख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिल पै आखण पाहे वड्डा न होवै घाट न जाए ना ओह मरै न होवै सोग दिंदा रहै न चुकै भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को होआ ना को होए जिबड़े आप तिबड़ तेरी दात जिन दिन कर कै कीती रात खसम साडा है ते कम जात नानक नावै बाज सनात रागू जरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा विनो करो गुर पास हम कीर करम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीर्त हमरी रहरास रहाओ अर्जन के बड़ भाग बड़े रेजन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृप्तस है मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भावहीन जम पास जो सतगुर सरणम संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जी मासे जिन हरजन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास रागू जरी महला पंजवा काहे रे मन चित बै उदम जा आहर हर जी उपरिया सैल पत्थर मह जंत उपाई तां कर जिक आग्या कर धरिया मेरी माधो जी सतसंगत मिले सोतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संबाही ठाकुर काही मन पहु करिया उडे उडिया वैसा पोसा तिस पाछे बचरे चरिया तिन कमन खलना वै कमन चुगा वै मन मह सिमरन करिया

यात बेयात शब्दक न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन तै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लहु लेहु सुधारा दोहरा नेत्र तम के चरण तर तद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग साध असाध जानू नहीं बास बाद बे बाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत।

और कर शब्द सपन अगन कटह सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु न देखियो न पियो ते अखियत संसार में सुख होटल गुर से अहन सहज सुभाय वाहिगुरु जी दर्शन परसे गुरु चल मरण दुख जाए हो वैसे कुछ प्रसन्न सच्चे पातशाह वल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह शेरशाह बैठे

नमो राग रूपे नमो साह साह नहु पू पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं परणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बोधदा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दंग अगंग घरता परम परम परमेश्वर पुरुष बालं सदा सर्वदा सद्दाता दयालंग छेदिय भेदिय नाम काम समस्त उपराधि समस्ताम तेरा जोर चाचरी छांदे जले हैं थले हैं पीते हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं दिशा पिशा इं पुजह प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्त इन दाने नमस्तवंग नाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञान नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वप्रेसंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजय समसंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा रिद्धि सदंग निवासी चरपण छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगी अचल राजे अटल साजे अखल त्रिमंगल कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग।

भक्त स्वरूप है छेज है छूत है कि नरक प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है सदैव स्वरूप है विभुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख अलेख है अपरम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनास है दास है तंद है बंद है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है जाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणं सर्वंत्राणं सर्वंकर्मं सर्वंधर्मं सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता शावलचंद त्वा प्रसाद नमो नरकनाशी सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता न साकं शरीक अमित अमीक सदैव प्रभ अजय अजाह भगवती छंद त प्रसाद के जाहर जहूर के हाजिर हजूर है हमेश्वर सलामे समस्त कलामे के साहिब दिमागे के सुन चिरागे के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहंद है के राज करहिंद है करीमल कमाल है खुशन जमाल है गरीमल कराज है गरीबल नवाज है हरि पुरुष कन है रासल पकान कलंक प्रणास है समस्त निवास है गंजल गनीम रजाय करीम है समस्त जबा है के साहिब ग्रह के नरक प्रणास है बहस्तल निवास है के सर्वल गवान है में सुरट वर्ण है तमामल तुजी में समस्तल अजीज है परम परमी से समस्तल अधीश्या अधीश्वल लेख है में सुरपीक है जमिन रजमा है अमी कुलवा है करीमल कमाल है के जोरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित्तो सुबास है के अजब स्वरूप है के मित्तो बेपूत है के मित्तो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मित्तो भंग है माध भार छंद त्व प्रसाद मोन मन प्रणाम गुण गुण बदाम हर बर गंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड बर रमंड अनपह नास मोन मन प्रकाश गुण गुण प्रणाम जल थल मदाम छेज अंग आसन भंग उपमा पार गात्मित उदार जल थल अमंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपह नास त्रित धर त्रास आदन बाहु एक सदाह ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरनाम अनचज गात अजज न पाद अजज न बात अनचंज गात अनंज बात अनटुट भंडार अनठट अपार

है, अरकालय है, खलखंडर है, महमंडर है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, ई कल कारण है, ई सर्व उबारण है, त्रैत के धारण है, जग के कारण है, मन मान्य है, जग जान है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश है, सर्वनाश है, करण कर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, पारती पर है, करणा कर है, पज पज पथ पथ प कृता कृता मृता मृता मृता मृता कर्ण कृता कृता कृताय तरणी त्रेतर है, परमेश्वर है, कृता कृता मृता मृता अजबा कृता मृता मृता नर नायक है, खल कायक है, विश्वंबर है, करणाल है, नृपनायक है, सृपायक है, पहुपंजन है, अर्गंजन है, रपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वकृता कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्मा आत्म बस है, जस के जस है, पुजन प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सात रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो

विस्माद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद नाग प्रजंत विस्माद पवन विस्माद पानी विस्माद अग्नि के डेविडाणी विस्माद धरती विस्माद कणी विस्माद साधर गै प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद विस्माद भोग विस्माद शिव विस्माद सला विस्माद दृढ़ विस्माद रा

0: श्लोक माला पहला कढ़िया सभी गोपियां पैर कन गोपाल गहण पौन पानी बसंत्र चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक उस ज्ञान में होनी
1: रोटियां कारण पूरे ताल आप छड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भो निर्...

0: सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुआरी स्वास्थ्य तिस तिस दिवान भग नानक सचे नाम विन क्या टिका क्या तगमाला पहला
1: लख ने किया चंगियाँ लख पुना प्रवान लख तापु पर तीर्था सहजोग विपान लख सुरतन संजराम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़ी है पाठ पुराण जिन करता है

लोक मैला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे अपार कूड़ मिया कूड़ बेबी खपोए खार कूड़ कूड़ा नहीं होना का विसरिया करतार किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ मा

साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सच समावेर कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैं सूर न ले प्रसिद्ध जाय नानक तो मुकुंद पाए जिज मैं जोर छली चंद्रा।

0: पोथी टिका तैज पाले तानम ले चाकाए अंतर पूजा पड़े ते बस संजम तुरका भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा मल्ला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री भगवान दिन लगा तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद न भया वे ओई साद कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कुड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कुड़ रहा भरपूर मथे टिक्का तेड़ तो थीगा खाए हथ।

कर मन में धरै गुमान। धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज तीर्थां ते जाके

पौड़ी वडी वडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग ने क्राजा पन करतबा जी अंदर जो सब की जान ला सब की तेरे वास्तेरा कर पला तेरा करना दवदा।

0: कला परपूर जिसे जत कथा नानक दासन दास बिन बता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा दोए दाई दाया खेला सगल जगत चंगियां बुरियां वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम दिया।

पौड़े वडे वडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब के तेरे वास तेरा घर पला तेरा कर आनंद विधाई तुद कर मान माता तीज अपना आप जार सर्व कला भरपूर दिस जत कहता नानक।

गए मशक्कत काले नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दीपालोआ मंडला खंडावर पंडा अंडज जेरज उत्पुजा खानी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना।

लिख लिख पड़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु किया देही दुख दिया सौ वे जिया अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे अहनस करे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पागो पेता ना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिना वे किस्ता न पाई रहे वाणी बनी मसानी अंदर जाने फिर पछतानी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस अंधे से तेने केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी पग

आप गिनाएंदे और ढाडी का नीच जात रुतम जात सदाएंदे तिन मंगा जित जैत आएंदे।

जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जती सदावे जुगत न जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा आपे हुए घट न कोई आखे पत्र माना पिछे पाइये ताना।

0: तू करता करना मैं नाही जाहू करी ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता कलकला भर पूर रहा तू सच्चा साहिब सिर तो सवालियो जिनकी दीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सुख रहा महला दूजा
1: जोग सबदंग ज्ञान सबदंग वेद सबदंग ब्राह्मण खत्री सबदंग सूर सबदंग सूद्र सबदंग प्राकृत है सर्व सबदंग एक सबदंग जे को जान है पेओ।